0: उम्र पर महका जांदे नी। लो
1: बहुत
0: जी, ये सी सूफी कलाम
1: थैंक यू
0: ते
1: जी,
0: एक
1: थैंक यू।
0: सॉन्ग जरा जल्दी जल्दी गुनगुनाना ना जे तरी इजाजत होवे
1: जरूर
0: ते।
1: जरूर, आउण
0: हां
1: दियो,
0: जी
1: आउण
0: जी
1: दियो
0: जी जी

0: हाय जे तू बिछड़ गई ता साथू रोया भी नी जाना।
1: क्या
0: जे
1: बात है।
0: तू बिछड़ गई ता साथू रोया भी नी जाना।
1: क्या बात है।
0: जाने वाली नी जरा ठहर जा, काली पेंदी कदे मानू रोकनी, साडा की बनूंगा कुछ सोचनी।

जी दोस्तो, सारे दोस्तों का दुआबा रेडियो के मंच उत्ते निका स्वागत है। माफी चाहते अज दोस्तों काफी मुशक्कत घोल के काम करके टेक्निकल इशू दे नाल तुहाडे रूबरू होए आ, माफी चाहते हैं। तकरीबन 40 मिनट आपां लेट है, पर जिन्ना कुछ भी कर सकांगे जरूर तुहाडे रूबरू होवांगे। अज सब तो पहला समा स्थिति तुहानू पता ही है जी, पर समय वल नू नहीं जावांगे ते समा खराब नहीं होर करांगे। ते सारे दोस्तों का दिलों धन्नवाद, तुसी इंतजार कर दिओ, चाहे पोस्ट पा भी दित्ती सी कि अज प्रोग्राम नहीं हो पावेगा, पर तुहाडी उडीक, तुहाडा प्यार मुहब्बत सब दोस्तों

समय समय महाराजा कबाइलिया नु जड़ा पाड़ी रखन दे लई पैसा ते उना विचली जद्दी दुश्मनी नु जड़ा हथियार बनाउंदा रहा। कदी वड्डी सेना दे नाल दबाउंदा ते 1830 दीआं गर्मियां च कुंवर शेर सिंह हरि सिंह नलुआ ते एलार्ड दी जड़ी कमान दे विच वड्डे लश्कर ने बागियां दे विरुद्ध जंग जित लई। लुधियाने दे विच पंजाब देश दे इंचार्ज जाने की पिछले आपां चैप्टर च पढ़िया सी कि लुधियाना उन्हां ने पहला उथे आके राज कीता। कंपनी दे अफसर ने दिल्ली रेजिडेंट नूं रिपोर्ट भेज दित्ती जिस दे विच इस बगावत नूं कुचलन दा विस्तार दर्ज है। लिखिया कि हरि सिंह नलुए तो मूलवादी सैयद अहमद हार गया पर बागिया ने हुण दूजा राह अपना लिया। आमो सामने लड़न दा तरीका छड के लुक छुप के जड़ा सी ओह घात ला के हमले करन लग पए। कुछ झड़पां दे विच भारी नुकसान करके जित भी हासिल कीती ते जित भी जांदे। इस लड़ाई दा खात्मा उदो होया जदो पखतूना ने हिंदुस्तानियां जहादियां नूं ना पसंद करना शुरू करता। उस उत्ते दोष लगे कि ओह हिंदुस्तानी जहादियां नूं इक इक करके पखतून कुड़ियां वंड रहा सी। पेशावर दे लोक भड़क उठे ते बेशक यह भी कहा गया कि दोष झूठे ने। पखतून इतिहास दे विद्यार्थी ओलफ कारो ने यह भेत जड़ा खोलिया जो बाद दे विच नॉर्थ वैसट फ्रंटियर प्रोविंस दे विच अंग्रेजा ने गवर्नर लाया सी। बुरे भाग उसके जहादी साथी साथ छड्डन लग पए। कई थावां दे उत्ते कतल होए। सैयद अहमद अंग्रेज फौजां ते बेहरहम पखतूना दे फंदे दे विचकार फस गया। तिरस्कारे होए सैयद उपर मई 1831 दे विच अचनचेती कुंवर शेर सिंह दी सैनिक टुकड़ी जड़ी सी उन्हां ने बालाकोट दे विच हल्ला करके दिन कटी करदे होए इस बागी नूं मार मुकाया। काबल दी शहर उत्ते जड़ा सीगा गाहे बगाहे पेशावर दे विच बगावता उठदियां रहियां। दिलचस्प वाकया ए सी कि सैयद दे सद्दे दे कारण पंजाब दे किसे मुसलमान चीफ ने सरकार खालसा दा साथ नहीं सी छड्डिया। क्यों पंजाब दे विच पत्ता तक ना हिल सकिया। 1815 दे विच नेपोलियन अंग्रेजां तों हार गया तां हिंदुस्तान जा पंजाब दे विच फ्रांसीसियां दा आधार खत्म हो गया। पर इसका एक होर असर होया। फ्रांसीसी सेनापति बाहरले देशां दे वल रुख करन लग पए। पंजाब दे विच आए ते 1822 दे विच एलरड ते वैतूरा सरकार खालसा दे विच आ गए। पंजाब दी फौज दे विच रेगुलर भर्ती होण वाले ए पहले यूरोपियन जरनैल सन। थोड़े सालां दे विच गोरियां दी जाने की यूरेशियंस जिहड़े सन जंग बाजां दी गिणती 50 टप गई 50 तों उपर हो गई। इन्हां दे विच कलाग अगस्त कुर्ट फ्रांस तो अते पाउलो अविता बिल इटली तो आया। साल 1929 दे विच महाराजे ने आस्ट्रो हंगेरियन होम्योपैथ डॉक्टर अपने वास्ते भर्ती कर लिया। दो साल दे बाद फ्रांसीसी भू विज्ञानी ते बनस्पति विज्ञानी विक्टर जैकमोट नाल महाराजा हिमालय दी सैर वास्ते निकल पिया। नाल लगदी हद दे उत्ते अंग्रेजां दी हाजरी बारे जड़ा महाराजा चौकस सीगा। इस करके खुश होया कि उनां दे विरुद्ध लड़ चुके दुश्मन हुण पंजाब दीआं फौजां नूं यूरोपियन तौर तरीके दे नाल ट्रेड करनगे जाने कि उनां नूं सिखलाई देणगे ट्रेंड करनगे। कई जरनैलां अते वजीरां ने कहा कि इन्नी वधीक तनखाह दे के यूरोपियनां नूं नौकरी दे उत्ते रखना ठीक फैसला नहीं। पर महाराजे ते इस सलाह ने जड़ा सी असर ना कीता। पर इहदा इक होर एंगल मैं देखदा हां कि भाई साडे लोक भरोसे योग किन्ने क सी ते फिर बाहरों बंदे लिया के जरूर इस करके भी रखने पए होणगे किते ना किते। हां इन्हां उपर कुछ बंदिशां जरूर लाईआं गईआं। तंबाकू दी वरतों नहीं करनी हजामत नहीं करनी ते गौ मास नहीं खाणा। इह भी कहा गया कि चंगा होवे इत्थे पंजाब दीआं कुड़ियां दे नाल विआह करा लो। महाराजे दी आग्या बगैर पंजाब तों बाहर नहीं जाणा। कोर्ट दे विच विचार वटांदरे दे लई नहीं आउणा ते आपस दे विच मेल जोल घट रखना है। शुकराना है फ्रांसीसियां ते इटालियनां दा। महाराजे दे जरनैल ते फौज वर्दी पहनण दे लई रजामंद हो गए। एलार्ड ते वैतूरे दी जिहड़ी सेना दा नाम फौजे खास रख्या गया

तो ये चांद बीत जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरे

बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमा होगा।

0: गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी,
1: क्या बात है।
0: निगाह दूर तलक जा

के अड़या लोक मार दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे।

जो दुनिया पत्थर मारे, असियो भी हंस हंस खा बैठे। तेरी खातर सजना, असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द न जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये

सब दरिया खेस कब राय सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बेड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया। हार

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नी चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नी चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई।

में खुदाई मंगली, ओ केड़ी में खुदाई मंगली, रब्बा पता हुंदा तेरे जे मकान दा, तैनू लिख लिख चिट्ठियां में पाम दा, रब्बा

सुख लिख दे तू खाना खाता टोके, तेरी मैं कुदाई मंगली ओ, तेरी मैं कुदाई।

घट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालों चुप ताएं अपनाउणा चंगा। बड्डियां दा

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

0: हाँ जी, हाँ जी,
1: अल्टीमेट डिसीजन ये बच्चे का है, उस 16 या 17 साल के बच्चे का है, मुंडे या कुड़ी का है, कि वो उस फील्ड में एक कहने इंसाफ दे पाऊगा,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: कि
0: हाँ
1: राह
0: जी,
1: तुर पाया
0: बिल्कुल
1: हैगा। जे
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने लगता है कि मैं इन्नी मेहनत कर सकता है या मैं इन्हों इंसाफ दे सकता है, वो बिल्कुल उन्होंने उस लाइन टो द लाइन जिन्होंने आप कहते हैं
0: हाँ जी, हाँ
1: वो
0: जी, हाँ
1: कर
0: जी,
1: सकता है। जे उन्होंने लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही दूसरी तरफ है, तो मैं सिर्फ देखा देखी आ रहे
0: उधर
1: हैं
0: आ गया है।
1: उस वेले। देखो अकेला डिसीजन लेना कई कई बच्चे ले भी लेंदे ने,
0: हाँ
1: बट
0: जी, हाँ
1: उस
0: जी,
1: वेले अगेन जे उन्होंने कोई कोई सीधे राह पा दे जिन्होंने आप
0: जी,
1: कहते हैं कि सीधे राह पाना,
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी, हाँ जी,
1: पेरेंट
0: उधर
1: टीचर कह दे कि भाई दिस इज योर कैलिबर, कैलिबर तुसी ये कर सकते हो, ये तुहाडे तो नहीं हो सकता। जो उस वेले
0: जी,
1: उन्होंने क्लियर क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाए तो वह काफ़ी जरा आने वाले जो साल है इनफैक्ट आने वाला पूरा करियर वो जरा बन सकता है या बिगड़ सकता
0: बिल्कुल
1: है। ये
0: बिल्कुल,
1: अगेन स्कूल साडा एक सिस्टम जरा टीचिंग का सिस्टम है
0: हाँ
1: वो
0: जी,
1: इन्ना
0: हाँ जी,
1: स्ट्रोंग होना चाहिए है। टीचर्स कई बार नहीं पता होंगे कि अगर करियर के बच्चे तो की कराना है, थोड़ा उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए अपने जड़े विद्यार्थी है कि अपना जिवें आपका बच्चा हो गए
0: हाँ जी, बस
1: वो
0: वो मेन
1: समझ के
0: चीज़ है।
1: जे
0: हाँ
1: वो
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल
1: उन्होंने काउंसल कर सकते हैं तो बहुत उन्होंने लिए वधिया रहता है, वरदान साबित हो सकता है ये गल
0: बिल्कुल
1: का।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, ये तो गल ठीक है जी। जे उन्होंने मौके पर कोई गाइडेंस मिल जाए, तो एक आप आम सुनते रहने हैं कि जोड़े दूसरे देश आ उन्होंने तो बच्चों का टैलेंट समय समय से क्लासा वक्री वक्री क्लासा अलग अलग लैवल से चैक करते रहते हैं कि यदि मेंटल एबिलिटी की है, ये जो स्किल्स कहे आ उन्होंने अपने आप ही उस लाइन च पा देंगे। वो साढ़े ये बड़ी वही घाट है लगती है कि यहोजा कोई टैसटिंग सिस्टम मोनीटरिंग सिस्टम बहुता नहीं है। तो यदि अगर स्कूल लैवल पर कोई तुम्हें की लगता है कि कुछ होना चाहिए इस तरह का ये क्लास के
1: कई स्कूलों से निजी स्कूलों से स्पेशली इस तरह का सिस्टम ऑलरेडी जरा वर्किंग हैगा।
0: ठीक है।
1: सरकारी स्कूलों से भी समय समय से कोशिश होती रहती है, पिछले कुछ समय से सरकारी स्कूलों से भी ये सिस्टम चला सी बच्चों की ग्रेडिंग करके कि उनका मेंटल लेवल किस स्टेज पे हैगा उन्होंने उस हिसाब से पढ़ाया जाए। बट अगेन इस प्रॉब्लम ये होती है कि ये जेडे करन ग्रेडिंग करन वाली साढ़े को वर्कफोर्स है वो प्रॉपर जी है उन्होंने आप वेल ट्रेन होना चाहिए
0: उन्हें
1: हैगा।
0: नहीं ट्रेनिंग है।
1: ये एक बहुत ही ह्यूज जरा प्रोजेक्ट हैगा जी आप गल कर रहे हैं, ये
0: हाँ
1: मैंने
0: जी,
1: लगता आने वाले समय के भविख के इस तरह सिस्टम जरूर एस्टैब्लिश हो जाऊगा।
0: हाँ
1: पर
0: जी, हाँ
1: फिर
0: जी,
1: मैं एक बार गल कहना चाहूँगी भारत अजिहा देश है जिस किन्ने ही गहरे साइंटिस्ट स्पोर्ट्स
0: वाकई
1: पर्सन किन्ने वधिया शख्सियत जड़े ने
0: जी,
1: अपने देश तो निकले ने वो बिना सिस्टम के निकले ने जेडी सिस्टम की आप गल
0: हाँ
1: कर रहे हैं
0: ये नहीं है, तभी वो है
1: ता
0: गए
1: भी दे एग्जिस्ट। सो बेसिकली
0: हाँ।
1: कुछ है अपने सिस्टम च इस तरह का कि स्टिल इन्हों चीज़ों के ना होने के बावजूद जेडे कि वेस्टर्न देशों के दे है कि ये सिस्टम
0: बिल्कुल
1: अपना सेल्फ जेडा सस्टेनेबल है। कुछ
0: ये,
1: है इनहेरेंट चीज़ है साडे देश के कि इन्नी महान शख्सियतें जड़ी हैं वो साडे देश चो आईया ने बिना इस सिस्टम
0: कुछ
1: के
0: तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं
1: मिट्टी नहीं
0: हमारी
1: हमारी।
0: ये गल तो हैगी
1: बाहर के सिस्टम से आप ब्रेक के बीच कोचिंग की गल भी कर रहे थे,
0: जी।
1: कोचिंग दे विच भी एक एक एक व्यक्ति के अंदर की गल होंगी है। कई बंदे
0: जी
1: होंगे वो कहते हैं कि बिना कोचिंग के असी एक स्टेप अगे नहीं ले सकते।
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: बिल्कुल जी,
1: बच्चे होंगे हैं स्ट्रीट लाइट के विच रोशनी के विच पढ़ के भी जड़ा है अज बड़ी उचेरी थावां ते, मैं अपने बैच की गल भी करदा आईएएस
0: जी
1: बैच के विच मेरे
0: अच्छा जी,
1: नाल
0: अच्छा
1: कई इस तरह के बच्चे सीगे बिल्कुल ही जड़े उन्हां को रिसोर्सेज नहीं सीगे पढ़न लई,
0: जी,
1: वो कितने जॉब कर रहे सीगे कोई किसी
0: जी,
1: किसी दुकान दे लगे हुआ सीगा, बट
0: ओके
1: जड़ा समय उन्होंने बचता सीगा ओदे विच वो किताबां लैके आंदे कोई रद्दी की दुकान तो किताबां लैके आंदा
0: क्या
1: ते
0: बात है,
1: ओदे
0: क्या बात है,
1: उत्थों पढ़ाई कर करके अपने सेल्फ स्टडी कर करके वो उत्थे तक पहुंचे। सो बेसिकली जरूरी नहीं कि सानू सारी सुविधावां मिलनगियां ताई असी लाइफ से कुछ बन सकते हैं, जे मन च तुहाडे हैगा विश्वास हैगा तुहानू अपने आप
0: जी।
1: ते विश्वास हैगा तुसी कुछ भी अचीव कर सकते हो।
0: सुविधावां दी घाट दा रोना रोना एक बहानेबाजी कह सकते हैं आपां कि है
1: बिल्कुल
0: नहीं है, फिर भी रिसोर्सफुल बंदा जिहड़ा है वो कुछ ना कुछ कितना कि तो अपना सब तो वड्डी गल मैनूं लगदी है कि जिहड़ा तुहाडे कोल कोई टीचा होना जरूरी है कि
1: बिल्कुल
0: तुसीं कितें पहुंचणा है, ये साधन फिर बंदा जुटा लैंदा है,
1: अपने आप जुटा लेंदा
0: साधन
1: बिल्कुल
0: जुटा लैंदा है। बिल्कुल जिवें तुसीं उदाहरण दित्ती है जिहड़ा लोकां दी, ते वाकई उहनां नूं पता सी कि कोई ड्रीम है उहनां दा, उहनां ने रियलाइज़ करना है ते उह कीता। उहदे लई चाहे उहनां ने रद्दी दुकान तों किताबां लईआं, चाहे उहनां ने कुछ भी कीता, बट दे डिड उहनां, और उह सक्सैसफुल भी होए। तो
1: मन
0: ये
1: में एक जो तुसी ठान लेंदे हो ना, एक मैनूं हिंदी दी लाइन याद आ रही है लहरों को शान देखकर
0: जी,
1: ये मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है।
0: हाँ।